जो जुलपा थौ नेपालसम्म चिन्छ सब पी खुद तसलाथो सप्तमी थो रेडियो नेपालका नेनादिश जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वर्षा सहकाल डकर्णमय या भोटो फकल सोयादी गुदु प्राचीन सांस्कृतिक विधि कथैल या जावला खेले मिग गोसा गोगु ज्यासोले बोटिक या कर्णमय व मनासोमा डेबी कुमारिया दर्शन यनादि गुह थो ज्याझोले उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा राष्ट्रसभा अध्यक्ष नारायण दहाल नापा मन्त्री तेगु बोती दुगु खसा दम्पति कर्णमय ख जावला खेले ठेङ्गु पेनु खुनु राष्ट्राध्यक्ष बोतीसँग भोटो किनिगु चलन दया वया सङ्गुदु भोटो श्वेता जावला खेले सर्वसाधारण तेगु मुजुगु ख। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नापाङको महाधिवेशन थौ चितवन या भरतपुरे जुई ठेङ्गुदु थौ उलेजा जुइगु महाधिवेशन यता व्यवस्थित प्रतिनिधिमूलक देखे त मागु युगको ठेम व्यवस्थापन ज्याफोने धुङ्कको रासोपाया प्रवक्ता मनिष छान जानकारी बिहा दिल भरतपुरिया गेस्ट हाउस चौरे जुइगु महाधिवेशन या उलेजा ज्यासो या त पार्टी सभापति रवि लामी छाने व प्रधानमन्त्री व वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह क घाइगु ज्याजुदु महाधिवेशन पार्टी वैगु कार्यदिशा कोछिगु नापा संगठन तब्याकिगु व जनसम्बन्ध या त अंश सिल्नाकिगु भलसा कागु प्रवक्ता शर्मा जानकारी ब्यादिगुदु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामी छाने थगु पार्टी लोकतन्त्र स गुब्ले ता मपाईको धया दिगुदु पार्टी महाधिवेशन यहाँ मेघ चितवने जुगु बैठक एक्ल लोकतन्त्र थ पिन्ता गुब्ले विमुख मयाईगु वचन नापा पङ्का दिगुदु वेक्ल छे व समाज जुइगु झाँका शिविर राजनैतिक पार्टीसँग जुइगु झाँका यो कोहे त धङ्गु मु फुले मालिगु धासे सचे जुया वैगु दिया नीति पला निहागे मागुली बब्या दिगुदु वैक्ल पार्टी अझ व्यवस्थित नापा गतिशील यायता महाधिवेशन तालाइगु भलसा नापा पङ्का दिगुदु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा वैगु मङ्सिर 26 निशा 28 गते तक्क ये महाधिवेशन यागु कोचिगुदु पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन या नाय सुइसम हिग उख्नु चोङ्गु केन्द्रीय कार्य समिति बैठक मङ्सिर 26, 27, 28 गते तक्क महाधिवेशन यागु को छिगु प्रवक्ता नापा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठ जानकारी बिहा दिल अध्ययन वैगु भदौ मसान्त दुने जिल्ला अधिवेशन व असोज 15 निशे 24 गते तक्क नेगुतलम प्रदेश अधिवेशन पुङकेगु कोछिनागु न प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी बिहा दिल स्वास्थ्य वृद्धावस्था नीति योग धैगु नारा नापा थौ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपाली नथिति ज्याजो गोसाको या देनियङ कहना सुङ्गुदु अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस दम्पतिक जुन 21 तारिक या दिन थिति सचेतनामूलक ज्याजो गोसाको या हनिगु या नावया चुङ्गु ख। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा सन् 2014 यागु कोचिना कथा सन् 2015 जुन 21 निशे अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हनेता सङ्गु ख। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी संयुक्त राष्ट्र खुइ गुक गु महासभा स योग सकसिया नीति सधाया नीति माली गुली अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा यागु प्रस्तावना दिगु ख। थो प्रस्तावित नेपाल नीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नापाङ्गु समर्थन या धुङ्का युरोपियन युनियन नापा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायी सदस्य राष्ट्र समर्थन यागु ख। सङ्घ घोषणा यागु दिवस मध्ये गुइनु दिने सचिव नेनेगु देश समर्थन यागु कीर्तिमान त संयोग दिवस कायम जुगु ख। सन् 2016 निशे 21 जुने अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हलिनियङ्क हनेता सङ्गु ख। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल योग्यता जीवनशैली कथा हनेता इनाफेना दिगुदु चिनिक गु विश्व योग दिवस लसता स्वदेश विदेश चुनाचुम्पी सकल तथा केही उदाज किजा दथुई सुख शान्ति समृद्धि नापा सुस्वास्थ्य लसहना देशना दिशे वेक्ला योग्यता जीवनशैली कथा हनेता इनाफेना दिगु ख। योग शरीर मन व आत्मायता स्वाइगु मुख अभ्यास जुगु वथुकी ध्यान प्राणायाम व शारीरिक आसन तेगु संयोजन जुइगु वथुकी यता वैज्ञानिक मानवीय जीवनशैली व जीवन पद्धति कथा कामागुली बब्या दिशे राष्ट्रपति पौडेल योग ध्यान व साधना शरीर मन व आत्मायता सन्तुलन हया तनाव हो याइगु प्याछी ऊर्जा लल हाइगु विचार पङ्का दिगुदु अध्ययन योग दिवस लसता भिन्तुना बिहा देशे उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव नियमित योग अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य नीति नापा मानसिक शान्ति सकारात्मक सोचो आत्मिक उत्थाने ग्वाली थेङ्कीको भलसा पङ्का दिगुदु।
बाजुराया बुढी गंगा नगरपालिका 10 रिठा बजार लिकर थौ सुते पवन दूत यातायात यात्रु बाहक बस छाका जुय नि सोमा मनुघापा जुगुदु महेन्द्र नगर सम बाजुरा वना चोङ्गु सुप्र 13:55 ल्याया बस सडक सिते आङ्गले ठक्कर नयाँ झाँका जुगु जलखला तपेश रावना जानकारी व्यादिल प्रहरिया कथम बसया ब्रेक फेल जुई धुङ्कानी चालक नियन्त्रण तङ्के धुङ्का थो झाँका जुगु अनुमान यागुदु घापा जुपिन्ता थिथि अस्पताल वासयागा तगुदु सरकार वैगो आर्थिक दे मेगु झिङ्यादो नेस ने खुगु हेक्टर बुझा याइगु बु या त सिंचाई सुविधा लल ह्यागु आजु कागुदु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सिंचाई तब्या के त खुसी नियन्त्रण र राष्ट्रिय गौरव आयोजना या छेला बुलाया त आपलन थ्या बिया तगुदु सा आदेन्यङको मुख झिङ्यागुलाक चेन हेदो गुस झिगु हेक्टर बुइ सिंचाई सुविधा थ्याङ्कगुदु सिंचाई योग्य भूमि मध्ये दक्षिण नियङ्क सिंचाई सुविधा थ्याङ्कगु भूमि न्यागुलाक सुई नेदो गुइगु हेक्टर भूमि दु कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय याकगु दीक्षान्त ज्या छोले नि छस गुई सोमा विद्यार्थी पि दीक्षित जुयादिगुदु थोए लसता विश्वविद्यालय सहकुलपति शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल दया भविष्य कृषि विकास उज्जवल जुइगुली सरकार थो लगाया उन्नया नीति पश्चिम फोको कुतया नाचनागु ध्यादिल विश्वविद्यालय मुङ्कगु ज्ञान सिप अनुसन्धान क्षमता व व्यावसायिक दक्षता दया कृषि पशुपालन व प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन हुगु युग योजाकिता ग्वाली ठिनिगु मन्त्री पोखरेल फलसा कयादिल निला निहनिसे क्यान्सर लुए या वास या नीति छेलिगु वास म जुगली अवनिसे अपुगु जुगुदु वास व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी किरण सुन्दर बज्राचार्य क्यान्सर या किमोथेरापी वास के छेलिगु वास छुन दि ने अपुगु वैक्लन ध्यादिगु खस वैक्लन वास या आ छु सिमित थासे जक लल्हना वया चनागुली थो हाठ्या बुलङ्गु ध्यादिगु ख वास या हु जुगुली जिमिसँग बिरामी या त अफुकेगु नीति दियनियङ्क छु थास अस्पताल फार्मेसिया नामे तोक्यान वास इना चनागु दु वैक्लन कनादिगु खस आयक नहे वास या आयत या त अफुके त बिरामी या त अफुक वास बिफैगु जुगुदु वैक्लन सरकारी व वास या मु समायोजन यागु प्रतिबद्धता पङ्क गुली अफुगु धयादिगु दुसा क्यान्सर या किमोथेरापी वास नीति छेलिगु कार्बोप्लाटिन सिसप्लाटिन नापाया वास याम हो वङ्गु निला निसे जुया चङ्गु धयादिल आ देशम पिने आबुख इरान दक्षिणी लेबलाने इजरायल यागो आक्रमण विरोध कथन हर्मुज जलमार्ग हान टिना बिगुदु तर अमेरिकी सेना थो दाबिया त अस्वीकार यासेन जलमार्ग सन् जहाँ से आवाजावत जुया चङ्गु धागु दु इरान लेबलाने यागु इजरायली हवाई आक्रमण त अमेरिका इरान दति जुगु लुआपु नङ्केगु नापा सम्झौता उल्लङ्घन जुगु दोपमा बिगुदु थो सम्झौता विश्व या अथे निगु प्रतिशत चिकौँ व तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास ल्याइगुली हाट्या जुइगु व हर्मु जलमार्ग हान न्याइगु व्यवस्था यागु धागु दु थोएदथि अमेरिकी राष्ट्रपति जे डी भान्स प्रत्यक्ष अमेरिका इरान वार्ता नीति स्विजरल्यान्ड छायादिगु दुसा मिगो जुगु वार्तासा आणविक ज्याछो व लेब्लान युद्ध विराम नापाया विशेष प्रगति जुइगु भलसा कागु वैक्लन ध्यादिल इरानी विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता इस्माइल बागे इ सम्झौता कथा मेगो पक्ष थगो प्रतिबद्धता पोङ्किगु ध्या दिलसा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ वार्ता या नापाङ्गु खुसी बोटी कागु ध्या दिगु दु थोएदथि नुगु युद्ध विराम घोषणा जुगु नि पेघ मबि व दक्षिणी लेब्लाने इजरायली आक्रमण मोतिन निमा मनुषिगु धागु दुसा इजरायल व हिजबुल्लाह छमासिन मेमा दथे युद्ध विराम उल्लङ्घन यागु आकाशाया जानकारी फिफा विश्वकप 2026 कथा इक्वेडर व कुरासा दथी कासा बराबरी के पुवङ्गुदु मिग जुगु कासासँग गोल मध्य मयासे बराबरी के डिवङ्गु खासा कासा बराबरी
अङ्क इनेता बाध्य जुइवा निगु पुचया नीति नकआउट चरण या ता थाकुगु ख वङुचाने जुगु समूह ई या कासा जर्मनी दासा आइभरी कोस्ट दुई एक गोल अन्तरम भुकुसे नकआउट चरणे धुवा वङ्गु दु वङ्गुचाने हे जुगु मेगु कासा सन् स्विडेन यता न्यागु एक गोल अन्तरम भुकुसे नेदरल्यान्ड्स त्यागु दु थौ जुइगु गुत थौ गुताई जुए पी न्याता पी न्यागु मिनेटे जुइगु जापान ट्युनिसिया द थ्री थुक्या थाना छ कने नदिस थौ दासा गुताई जुए पी न्यागु मिनेटे जापान ट्युनिसिया द थ्री थेन्देम बल्ला जुइगु जुगु दु आ मौसम या जानकारी थौ कोशी मधेस बागमती व गण्डकी प्रदेश थिथि थासे वावैगु सम्भावना कुबीगु दुसा कोशी प्रदेश पहाडी तराई लागाया छगुनीगु थासे आप्लाङ वावैगु सम्भावना दु लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लागाया छुन थासे क्वागु फेवुइगु बागमती व गण्डकी प्रदेश तराई लागाया छुन थासे न क्वाइगु सम्भावना दुगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु निपे गौसा ये सोनिगले निन हेगुनिसे सोङ्गु डिग्री सेल्सियस दति क्वाज लुगु खसा थौ धासा ये सोनिगया क्वाज निगुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस दति जनिगु धुकुमा दु थौ सुथे ये सोनिगले न्याता इजुया सोङ्गु मिनेटे लुया वो गुनिबा सनिलन हेता इजुया गुगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन शुभ

नमस्कार, मिडियम वेबसाइट से 92 किलो हर्ज का साथ में एफएम बैंड 98.1 मेगा हर्ज में हमी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल को बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँबाट बोलिरहेका छौं। रेडियो नेपाल को बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँ सुनेर बस्नुभएका संपूर्ण आदरणीय श्रोतालाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्छौं। प्रविधि संयोजनमा देवकी भण्डारी अनि राधिका ओझाको साथमा विद्या चौधरी र रुकमुडी पोखरेल। अब प्रस्तुत गर्छौँ रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँबाट साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण गर्ने कार्यक्रमबारे जानकारी।

को छाया मन परे कि माया सोचिरहन्थे कहाँ होली समयको खेला लाग्थ्यो बेला बेला सोचिरहन्थे कहाँ होली।

0: यति हाते पारण किन गर्थे मैले साँच्चै मना नपरे महिना वर्ष दिन कुरी बस्थे किन साँच्चै मना नपरे
1: बर्खे भेल छोपी मुठी मानु रोपी पाथी मुरी फलाउला पसिनाको कमाई खाउला

0: लसो फ्याफुल्ला रेडियो के ताङ मुगलान लगे अर्थात वैदेशिक रोजगारी रिराङ द टेनमला गा सूर्य मक्तान वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ रोरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल से शोभा चुके ताङ सातला तिरेम चुनुन दुरी प्रसारणलाई पनि खपमला तिन्डिला गेताङ मुगलानला गेरी फेर्का भिल्डी निभा बिम्बा गाछा किन्नुन तोबा अभिमुखीकरण तालिम पिडिओटी विभतिले हिन्ना फेर्का भिल्डी केलाबरी निबन मुबा अर्थात् श्रम स्वीकृति किन्से फेर्का भिल्डी निभा मिसे चु तालिम तिल द किन्नुन तोब मुलम विभा ताम्री वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला शाखा अधिकृत सञ्जय अधिकारी थिन्ला बताम ज्ञान बरी खाम्सेला मुला ओसेम वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ से पिनमान खाबा लोलो लोलो महत्वपूर्ण सूचनाका दिनुन् तिनीला गेताङरी थान्सेला मुला गेताङ लिच दोना ज्ञानबारी राङदा मोहिजन मुला फिर्क्या बिल्डी केलाबरी निभा बेनन गेलाबा मिसे अनिवार्य किन्नुन तोबा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दा अङ्ग्रेजरी प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ अर्थात् तुनबारी पिडिओटिबिसी पाङबा हिन्ना फिर्का बिल्डी फ्याङबा बिमा गाछा सरकार से चु पिडिओटी तालिम अनिवार्य किन्नुन तोला बिसे तिल त पाङबा हिन्डौँ गेलाबरी निबन मुबा मिसे चु तालिम ग्याम खाराङमा खाल्ला जानकारी थिएन सिप्लो परि म्याङमा मुलम फिर्का भिल्डी निसे लाभा गेदा सुरक्षित मर्यादित थिएन व्यवस्थित सोबारी चु तालिम से खाराङमा खाल्ला महत्व पुब मुलम विवताम गोबारी थिएन गोना लाबारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला शाखा अधिकृत सञ्जय अधिकारी थिएन
1: श्रम स्वीकृति
0: किन्से फिर्क्या भिल्डी गेलाबारी निभा गादेसे फिर्क्या भिल्डी निभा बिबाङा छ चु अभिमुखीकरण तालिम जा किन्नुन तोब मुला चु तालिम जा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 थेन वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 से किन्नुन तोला बिसे पाङबा मुला चुदा सामान्य तामघ्याम गुणालादोमा फिर्क्या भिल्डी निभा बिबाङा छ किन्दोबा तालिम बिबाइन्से फिर्क्या भिल्डी खाजी बैनुन गेलाबारी निभा बिबाङा छ किन्दोबा तालिम हिन्ना खाजी बैनुन मि खाजी बैनुन फिर्क्या भिल्डी निसी गेलाबा बिमा हिन्से नेपाली बिमा स्यान ह्युल्ला लोलोन ठिम नोर ठिम रिम ठिम थेन ग्ला थेन ह्युला अनुसारला लामन खाल्ला ठिम गदे तापमला थिए अवस्थारी राङला लुइला खारङला सि ख्याल थान्बा खारङला सि सुरक्षित थान्बारी खाम्बा मुला बिबा ताम गदे सेना थेन गुनालाबारी खाम्गा बिसे चु तालिम पिन्बा हिन्ना ओसेम फिर्क्या भिल्डी निबान लामा ट्रान्जिट ताबारी खाम्बा मुला मिला ह्युल्ला एयरपोर्ट दोबा दुइरी तिलला दोबा मुला थेरी निबा दुइरी नेपालले आमराङबा लामन सेगा दिमराङबारी खाम्ला नेपाली प्रयोगनुन आलाबा उपकरण गदे प्रयोग लदोबा ताबारी खाम्ला थेदाबसे फिर्क्या भ्युल्ला गेदा खानाङमासी ज्याबा सबारी खाम्ला बिसे जानकारी पिनबा तालिम भिन्ना नेपाल ग्याम फ्याङबा बिमा गाछा हेन्छे थेरी दोधे दोनाला सेनुन तोबा थेन गोनुन तोबा ताम गदे जस्तो कि नोर सामाजिक थेन रिमठिमला ताम गदे लोप्पन खापम मला चु त तालिम बिसे जा तिल द पाङमा हिन्ना बिसम चु लोप्प ताम ताबसे तालिम बिसे पाङमा हिन्ना चुरी जा तालिम पिनमा प्रशिक्षक थेन लोप्प सेला पाठ्यक्रम वैदेशिक रोजगार बोर्डला लोनखाङसे शोभा तापासेनन् चुदा तालिम बिसी पाङबा हिन्ना बिनन ताम्दा डिक्नालासी पाङबा हिन्ना बिसाम नेपाल ग्याम निमाइन्से नेपाली एखादे दोनाला बिनन सेतोबा थेन गोतोबा ताम्गदे लोप्सी पिनबा तालिम हिन्ना
2: चु तालिम काते दुई धोना ताबा मुला खास लासी मेन्दोगी गेलाबारी निबन मुबा मिसे चु पिटी ओटी तालिम किनबारी काते दुई फेदोबा मुला ओम
1: नेपाल सरकारले हाल
0: नेपाल सरकारले दाने चु पिडी ओटी तालिम दाजा ङिरे सङ्गन खापा बोला ओसेम चु तालिम किनबारी जा ग्यार्जिङिस टाङ्गा फादो बमला यदि राङनिसे ग्यार्जिङिस बिमा लामा टाङ्गा फादो साम ब्युन गे थेन रोजगार ब्युन खाङ रेखासी उजुरी पिनबारी खाम्बा मुला चुराउनु लसे वैदेशिक रोजगार विभाग थिएन वैदेशिक रोजगार बोर्डला लुन खाङ रेखासी नुन पाङबारी खाम्बा मुला चु तालिम
2: पासपोर्ट सोधोबा मुला स्यान खाप प्रक्रिया छोदासी अर्थात फिर्क्या भिल्डी गेलाबारी निबान मुबा मिसे खास खाप्पा धुइरी चु तालिम किनबारी खाम्बा मुला
1: पूर्व प्रस्थान अभिमुखी
0: फिर्क्या भिल्डी गेलाबारी निबा बिमा गाछाला तालिम बिमा हिन्से फिर्क्या भिल्डी फ्याङबा बिमा गाछा किन्दोबा तालिम हिन्ना फिर्क्या भिल्डी निबारी बिसी पासपोर्ट सोसी जिम्मा लिछ राङसेन बाङ्लासे व्यक्तिगत रूपले निबन मुला बिसाम वैदेशिक रोजगार विभाग रि निवेदन पिन्दोबा मुला संस्थागत हिसाबसे निबा हिन्ना बिसाम मेन पावर कम्पनी थिएन हायरिङ कम्पनी गदेसे कागज पत्र गदे सोसी पिन्बा मुला उसम भिसा खासी फ्याङबा बिमा गाछा चु तालिम किन्दोबा मुला वैदेशिक रोजगार बोर्डले लुनखाङसे तालिम पिनमारी स्वीकृति पिनमन खापा मोला ओसेम थेन्सेन निरेला तालिम पिनमन खापा मोला तालिम पिनमन खापा प्रशिक्षक कादे दजा वैदेशिक रोजगार बोर्ड से दुई दुईरी तालिम पिनमन खापा हिन्ना
2: लोलो लोलो युल्डी गे लाबारी निबा कादे दा लोलो लोलोन तालिम पिन्दोबा मोला ताला थेरङबा दुईरीजा खारङ
1: नेपाल
0: सरकारले दान्दे गोर्डु क्लस्टरी बोला पमला गोर्डु क्लस्टरले हिसाब से जा गेलाबारी निबा मी युरोपली निबारी छे बहिन्ना की जीसीसी युल्कादेरी निबारी छे बहिन्ना इजरायली निबारी छे बहिन्ना की मलेसियारी निबारी छे बहिन्ना गेलाबारी निबा मी खाप युल्ली निबारी छे बहिन्ना थेनुन अनुसार थे युल्डी पाङमा गई धर्म रिमठिम थेन थिमला फेरि लोलन कक्षा अथवा तालिम सेङमान खापासे नाङ्गरला रेरी ठुङमारी खाम्बा बेनन खाला समस्या गदे जस्तो कि लुई लताम टाङ्गा लताम थोसी निदोबा कागज पत्र लताम फिर्का भ्युली दोषी जेमा लिच्छा लाबारी ताबा थेन लाबारी आताबा बिनन ताम मनोपरामर्श लताम गदे लोपन खापमला चुरानु लसी लोलो लोलो हिल लताम लादो माझा ग्योई लताम रिमठिम लताम थेन ठिम लताम गदे राङमा बिनन ताम गदे चुनन तान लिम्री लोप्ची पिनबन खापमला
2: बिमायनसे घिरेला तालिम्री घण्टानोन दाङसे लोलो लोलोन ताम गदे लोप्सी पिनबन खावाडिम आइन
1: प्रत्येक घण्टा
0: घण्टा घण्टारी तिल तिल ताम लोप्सी पिनबा बिबा तामजा पाठ्यक्रम रिन सोसी थान पाठ्यक्रम रि मुबा अनुसार नुन तालिम पिनमन खाबा गिन्दुन गदिसे तालिम सेङमन खाबे हिन्ना खप्पै बिमा गिक्छा रेकुनो जा बिनान सेन सेनुन तोबा थेन गुनुन तोबा ताम गदेदा लोप्सि पिनमन खाबो मला खाजी बैनुन हुल विशेषला तामला बे हिन्ना बिसाम लोलुन दुई तोक्लासि तिल तिल ताम गदे सेतोबा थेन गोतो बे हिन्ना थेथेनुन ताम गदे लोपन खाबो मला
2: जो अभिमुखीकरण तालिम किन्सी जिनबा लिचा गेलाबा मिदा
0: नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभाग थिएन वैदेशिक रोजगार बोर्ड लुनखाङसे श्रम स्वीकृति किन्सी गेलाबारी निभा तुङ्गिक्से ग्याजा ब्रेमी सडक दुर्घटना रिपोर्ट शिवम राङभमला चु तामदा च्यासी वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई लुनखाङसे पिमान खाबा पिडिओटी तालिम रिजा चुरङमा सडक दुर्घटनाका देग्यामसे सोबारी तिल तिल लादोबमला बिसी तालिम पिनमा लिचा धान्दी सडक दुर्घटना रिपोर्ट शिवम मिगदे जस्तो कि ट्राफिक नियम थामन मिगदे जेल दिमुला यदि पिडिओटी तालिम प्रभावकारी तबारी खाम्बा हिन्ना बिसाम खलाइनुन मि थेराङ शारीरिक थिएन मानसिक रूपी खारङमा तबारी खाम्दबमुला गेलाबा मिसी शोभा टाङ्गा त खाराङलासी सोना लाबा खाराङलासी खर्च लाबा नेपाली खाराङलासी टाङ्गा पुगेका बारी खाम्बा मुलम बिब तामेन्से नेपाल रि एसी खाबा लिछ तिल तिल गेलाबारी खाम्बा मुला बिबताम दोनाला बिनन तामगदे लोपन खाम मुला चु तालिम किनमल लिछजा फिरके भुलिनी सि गेलाबारी आत्मविश्वास लेनला सिपिन बमला चु तालिम सेजा नांगर तबारी खाम्बा बिनन समस्या गदला फेरि जानकारी पिनमन खाम मुला थेतबसे यदि नांगरला खाबरेरी तिलाई समस्या तासम खलंग संपर्क लादो बमला खल्ल संपर्क लादो बमला थिन खरंगलासी संपर्क लादो बमला बिबा बिनन तामगदे लोपसि पिनमा छ चु तालिम नामन महत्वपूर्ण मुला
2: खाजीबाइनोन मिसे चु अभिमुखीकरण तालिम किनबा मुला बिबा ताम खारङ लसी थायाङबारी खाम्बा मुला सरकार चाहिँ खारङ लसी चुदा व्यवस्थित शोभा मुला ओसेम खाजीबाइनोन मिसे निरेला तालिम किन्जिम बिसिजा खारङ लसी
0: वैदेशिक रोजगार विभागला फेमिस ठिमरी अभिलेखलासी थान्बासे खालसे तालिम किन्जी खालसे आकिन्जी बिबतामला प्रत्यक्ष निगरानी लबरी खाम्बासे थातबारी खाम्बामला चुरानु लसी चुदा नेपाल सरकार से प्राविधिक हिसाब से अनुगमन थेन मोनिटरिङ लबन खाम्बामला चु ठिम सेलामा तालिम किन्बारी निबमिसे ध्यान पिन्छी तालिम किनमन खाबा नुन मराङबा मुला
2: चु तालिम रिजा अडियो थेन भिडियो गादे उनमन खाबा मराङबा थेन थेबा मुला चु माध्यम सेजा खारङलासी सेना थेन गोनालाबारी खामबाडीम
1: वास्तवमा शब्दले भनि
0: वास्तवरी सुङसेपाङमा तामगादे बिमाइनुन भिडियोरी राङसेन च्याबरी म्याङमा तामगादेसे लोपरी माइबा तामगादे दा लामन प्रष्ट गोनालाबारी खामसिटीबा मराङबा मुला जस्तो कि ट्राफिक नियमला ताम सडक लेनला ताम एयरपोर्ट रि दोबले चतिला लातबु मुला टोयलेट रि खारङलासी निबा राङला लगेज दा खालाङ थानबा थेन खारङलासी किन्दोबु मुला खालाइ मिसे किनबारी खासम तिला लादोबु मुला बिबरङबा लामन तामगादे नेपाल सरकार फिर्के बिल्डिनी सेलाबा गी थेन सम्बन्धित केलाबन खाबा दात्री निकाय एनजिओ थेन आइएनजिओ कादेसे सोबा अडियो थेन भिडियो हुनबा लिछा लोपरी माइबा तामगादे दा जानलासी गोनालाबारी खाम्बासे लामन प्रभावकारी तसिटीबा मांगबा मुला
2: लिछारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला तर्फ ग्याम राङदा तिलाई सुङ्गे मानबा मुला बिसाम सुङबारी खामसेदा मुला
1: वैदेशिक रोजगार
0: यदि रङ फिर्के बिल्डिनी गेलाबारी निबन मुला बिसाम फिर्के बिल्डिनी तिला गेलाबारी निब हिन्न खाइमा दोना दा निब हिन्न बिबराङमा ताम्री योजना सोसिन नितोबा मुला रङसे फिर्के बिल्डिनी सोबा टाङ्गादा खारङलासी सोनालाबा खारङलासी नेपाली बाबा तिनी नाङ्गर प्रविधिलाई दुरुपयोग लासी ठगिरी प्रताप्का दिनुन् नाङसिटी मुला ठङमारी अथवा लिङ्क ठङसी थेन लाबारी अथवा ग्लारी कमेन्ट लासी पिनमा लामन मिसे दुङ्गाली याङसिटी बानुन् राङबा मुला थेरङ आलाबारी आला मोइजेन मुला चुरानु लासी फिर्के बिल्डिनी गेलाबारी निबा लिचा तनाव किन्सी राङला लुइला ख्याल आलामा अङ्ग भङ्ग तसै मिनुन सिबारी खाम्बासे फिर्का बिल्गाम राङ खाराङलासी सुरक्षित तसे नेपाली एसी खाबा बिबताम्दा ध्यान पिनबारी खाम्दो बमराङबो मला यदि राङसे फिर्के बिल्डी खाजिबैनुन खाल्ला दुङ्गाल याङजी खाजिबैनुन खाल्ला समस्या ताजी बिसाम वैदेशिक रोजगार बोर्डला लुन खाङसे रोलापन खाबो मला चु सेवा किनमारी जा श्रम स्वीकृति किन्से नि तब मला गेलाबारी निबाला भिसा थुम्साइनुन थेरिन टिबा लोपन भिसा थेन कोरबारी निसी गेलाबाका दिसे जा खाजिबैनुन खाल्ला सेवा सुविधाका दे किनमारी आम्याङ मला थेतापसे फिर्के बिल्डी गेलाबारी निबाका दिसे राङला श्रमला दुई थुम्जी कि आथुम्जी बिबतामगादे गोसिन्टी तोब मला बोर्ड से पाङनुन तोब तामतिला मला बिसाम सचेतता सिगु राङदा सचेतनाला बारे बोर्ड विभाग लोनखाङ थेन समाधान कल सेन्टरला फोन लामा टाङ्गा अनिबा नम्बर 1141 नम्बर रि फोन लासिनुन लामन तामगादे सेबारी थेन गोबारी मोइजेन मला धन्दै गणित थिएन तामलाबान मुबा वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला शाखा अधिकृत सञ्जय अधिकारी गेताङ तिब दुई रिपाङमा राङ्नुन लसै फिर्के भ्युलिनी सिलाबा गेदा सजिलो सुरक्षित थिएन व्यवस्थित सुभारी थिएन फिर्के भ्युली गेलाबा दुई रि ताबारी खाम्बा लामान खाल्ला समस्या जोखिम थिएन दुर्घटना द च्याङ्नलाबारी विषय नेपाल सरकारसे गेलाबारी फिर्के भ्युली नेपमा छ अभिमुखीकरण तालिम पिडिओटी पिनमन खापो मला थेनुन तालिमला फेरि वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला शाखा अधिकृत सञ्जय अधिकारी चाहिँ तन्ते ज्ञानलासी गुणलासी पिनमा मला पिडिओटी तालिमलाई फेरि अथवा फिर्के बिल्डी निसिलाबा गेला फेरि स्यान्ताम गोबारी से मुला बिसाम बेनान जोङला जोङ प्रशासन गेदिम्री मुबा एमआरसी बिसी पाङबा माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर रिनिसी न्युबारी थेन समाधान कल सेन्टरला 1141 नम्बर रि फोन लासिनुन जानकारी किनबारी खाम्बा मुला यदि हाङ खाजिबानुन हिल्डी केलाबारी निबन मुला बिसाम फिर्के हिल्डी केलाबारी निभ बिमा गाछा

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमै समाचार सुनल जा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल योगके जीवनशैलीके रूपमे अपनेबाक लेल आग्रह कयलनि अछि। 12 विश्व योग दिवसके अवसर पर स्वदेश तथा विदेशमे रहल सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिन तथा भाय सबमे सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यक हार्दिक शुभकामना व्यक्त करैत ओ योगके जीवनशैलीके रूपमे अपनेबाक लेल आग्रह कयलनि। योग शरीर मन आत्मा के एक संग जोड़ वाला समग्र अभ्यास भेल आ एहि में ध्यान प्राणायाम शारीरिक आसन सभक संयोजन रहबाक तथा एहि के वैज्ञानिक मानवीय जीवनशैली तथा जीवन पद्धति के रूप में लेल जेबाक बात पर जोर दैत राष्ट्रपति पौड़ेल योग ध्यान आ साधना सँ शरीर मन आत्मा के संतुलन में आनि के तनाव कम करबा में तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करबा में सहयोग करबाक धारणा व्यक्त कयलनि। संदेश में योग संबंधी अध्ययन अनुसंधान तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक तथ्य सँ हमरा सभक देश योग भूमि के रूप में रहल पुष्टि करैत आयल उल्लेख कयल गेल अछि। राष्ट्रपति पौड़ेल योग के राष्ट्र नीति शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभिन्न अंगक रूप में स्थापित करैत एहि के विकासक लेल थप कार्य करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। संदेश में वो विश्व योग दिवस सब में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करैत शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक भावनात्मक रूप में स्वस्थ तथा सुखी रहबाक लेल प्रेरणा प्रदान करे ई कामना कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव नियमित योग अभ्यास सँ शारीरिक स्वास्थ्यक संगे मानसिक शांति सकारात्मक सोच आत्मिक उत्थान में सहयोग पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आई शुभकामना संदेश जारी करैत ओ योग के दैनिक जीवन शैली में आत्मसात कऽ स्वस्थ अनुशासित आ संतुलित जीवन दिशा अग्रसर होयबाक लेल सबसँ आग्रह कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति यादव पछिला समय हृदयघात मधुमेह सहित दीर्घकालीन नहि पटयवला रोगक नियंत्रण तथा नियंत्रण में योगक महत्वपूर्ण भूमिका रहल उल्लेख करैत योग मानसिक तनाव जीवनशैली जन रोग तथा सामाजिक असंतुलन घटेबाक प्रभावकारी माध्यम बनल बतौलनि अछि। स्वस्थ जीवनशैली के अभ्यास मार्फत समृद्ध राष्ट्र सशक्त समाज निर्माण कयल जा सकबाक उल्लेख करैत उपराष्ट्रपति यादव एहि दिवस सँ हमरा सबके योग अभ्यास के जीवनशैली में समावेश करबाक लेल प्रेरित करे सुस्वास्थ्ययुक्त अनुशासित तथा संतुलित समाज निर्माण दिस जागरूकता फैलाब संदेश में कहल गेल अछि। राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी रासपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू भेल अछि। भरतपुरक गेस्ट हाउस चौड़ में पूर्व घोषित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन शुरू भेल अछि। भरतपुरक गेस्ट हाउस चौड़ में निर्माण कयल गेल सभा हॉल स्थित विशेष समारोह में पार्टी सभापति रवि लामिछाने आ पार्टीक वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह घंटी बजा कर महाधिवेशनक उद्घाटन कयलनि। ओहि अवसर पर हुनका सबसंग मंच में रहल अतिथिगण सेहो एकहि संग घंटी बजौने छलथि। महाधिवेशन उद्घाटन समारोह में पार्टीक सभापति रवि लामिछाने आ प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उपस्थित छलथि। एहि तरह रासपाक पदाधिकारी एवं केन्द्रीय नेतागण आ महाधिवेशन प्रतिनिधि सभक उपस्थिति रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति गगन कुमार थापा, नेकपा एमालेक नेता प्रदीप कुमार गेवाली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक नेता वर्षमान पुन आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपाक अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह लिंगदेन उद्घाटन समारोह में सहभागी छलथि। एहि तरह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय, जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टी का अध्यक्ष चंद्रकांत राउत सहितक नेतागण उद्घाटन समारोह में सहभागी छलथि। रासपाक चितवन में शुरू भेल पहिल राष्ट्रीय महाधिवेशन में 4211 प्रतिनिधि सहभागी भेल ई पार्टी जनौलक अछि। महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम में चितवन आ छिमेकी पड़ोसी जिला रासपाक जिला स्तरक नेता कार्यकर्ता आ शुभेच्छुक सभक उल्लेख्य संख्या में उपस्थिति रहल छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपाक उपसभापति डॉक्टर स्वर्णिम बागले अपन पार्टी नेपालक राजनीतिक पुनर्जागरणक अभियान भेल बतौलनि अछि। पार्टीक चारिम स्थापना दिवस के अवसर पर चितवन में आयोजित प्रथम महाधिवेशन के संबोधित करैत अर्थमंत्री सेहो रहल ओ रासपा सकारात्मक परिवर्तन के आकांक्षाक राजनीतिक अभिव्यक्ति भेल बतौलनि। डॉक्टर वागले हमरा सब संग उद्देश्य केवल सरकार परिवर्तन मात्र नहीं भा राजनीतिक संस्कार परिवर्तन करब रहल धारणा रखलनि। रासपा विवेक विधि आ नियम आधारित शासन प्रणाली योग्यता प्रणाली तथा नागरिक केंद्रित लोकतंत्रक पक्ष में रहल ओ स्पष्ट कयलनि। ओ रासपा पुरान पुस्ता सँ संघर्ष क नहि क नया राजनीतिक संस्कार स्थापित करबाक लेल आयल उल्लेख कयलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले

आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी नेपाल निर्माणक लेल नागरिकक क्षमता संस्थागत सुदृढ़ता आ राष्ट्रीय आत्मविश्वास के केन्द्र में राखल जेबाक उल्लेख कयलनि। पार्टीक महाधिवेशन के नेपालक राजनीतिक पुनर्जागरणक प्रारंभक रूप में चित्रण करित निराशा के आशा में आक्रोश के निर्माण में विद्रोह के रूपांतरण में बदलवाक अभियान में सहभागी होबाक लेल सबसँ आह्वान कयलनि। स्वस्थ वृद्धा आस्थाक लेल योग नाराक संघ आई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय अंतर्गत गठित मूल समारोह समिति योग अभ्यास सहित प्रवचन कार्यक्रम संपन्न कलक अछि। एहि अवसर पर मुख्य सचिव सुमन राजदयाल राष्ट्रीय रूप में योग ध्यान आरोग्य दिवस मनेबाक निर्णय कऽ चुकल बतौलनि। विद्यालय तह सँ योग ध्यान आ आरोग्य पाठ्यक्रम तर्जुमा के पठन पाठन सेहो शुरू भऽ चुकल ओ जानकारी करौलनि। योगक बहुतो प्रचार भेलाक बावजूदो जनमानस में बहुत लाभ नहीं लॉ सकला कारणे आब ओहि दिस लॉ जेबाक लेल जागरण शुरू भऽ चुकल मुख्य सचिव अर्याल बतौलनि। मंत्रालयक सचिव चूड़ामणि पौड़ेल अस्वास्थ्य निरोगिताक लेल नियमित रूप में योगाभ्यास कयल जेबाक बात पर जोर देलनि। मानसिक रूप से स्वस्थ रही का समाज आ राष्ट्र के सेहो स्वस्थ बनाओल जा सकबाक आ योग सँ सहयोग करबाक हुनक कथन छल। जीवन विज्ञान नेपालक LP भानु शर्मा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दुख निवारण के संगे समृद्धिक माध्यम के रूप में आगू बढ़ाओल जेबाक कथन रखलनि। नेपालक प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र संघ आरोग्य दिवस के घोषणा कयल जानकारी सेहो ओ देलनि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हरेक वर्ष जून 21 तारीख के दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजन कऽ मनाओल जाइत।

परिसर में स्वस्थ उमेरक लेल योग नामक मूल नाराक संग भारतीय महावाणी दूतावास द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृहत योग शिविर के उद्घाटन करित मुख्यमंत्री यादव शारीरिक रूप में स्वस्थ, मानसिक हिसाबें शांत, आध्यात्मिक रूप में उच्च चेतनायुक्त भक जीवा कला योग थीक ओ बतौलन। मुख्यमंत्री यादव प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता में रह के काज करल आ विद्यालय क्षेत्र में सेहो अध्यापन के संग योग के समावेश का अनुशासित नैतिकवान ऊर्जाशील भावी पुस्ताक निर्माणक लेल अखने से ध्यान दे जेबाक बात पर जोर दलन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक वन तथा वातावरण मंत्री शंकर चौधरी योग मनुष्य के तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन आदि से मुक्त करबाक, मन भीतर के विकार हटेबाक बतबैत प्रेम, करुणा एवं सकारात्मक सोच विकासक लेल योग महत्वपूर्ण रहल बात पर जोर दलन। यही तरह मध्य प्रदेशक कृषि तथा भूमि व्यवस्था मंत्री श्याम पटेल नियमित योग कैला सँ शरीर में रोगक प्रवेश नहीं हो पैबाक, रोग लाग चुकल अवस्था में सेहो एक गंभीर अवस्था में नहीं पहुँचा देवाक बात अनुसंधान सबसँ पुष्टि भेल बतौलन। भारतीय महावाणी दूतावासक वाणी दूत देवी सहाय मीनक अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यक्रम में प्रसाक प्रमुख जिला अधिकारी भोला दहाल, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी के जिला स्थित प्रमुख गण, बीरगंज उद्योग वाणी संघक अध्यक्ष हरि गौतम, ग्रीन सिटी का अध्यक्ष जयप्रकाश खतान, बीरगंज युवा समाजक संस्थापक अध्यक्ष कमल चौगाई सहित नेपाल तथा भारतक हजारों के संख्या में स्थानीय बासिंदा सहभागिता रहल छल। रोहतक प्रमुख बाजार में एखन स्वदेशी उत्पादन के आम सबके आपूर्ति बढ़ लागल अछि। जिला गौड़, गरुड़ा, समनपुर, कठरिया, डुमरिया, चंदिगापुर सहित बाजार में नेपाली आम प्रशस्त मात्रा में बिक्री के लिए राखल गेलाक बाद उपभोक्ता के आकर्षण बढ़ल व्यवसायी सब बतौलक अछि। फलफूल व्यवसायी के अनुसार तराई मधेशक विभिन्न जिला में उत्पादन भेल मालदा, बम्बई, दशहरी सहित जातिक आम बाजार में पर्याप्त मात्रा में आवा लागल अछि। गौड़क फलफूल व्यवसायी रामबाबू सा नेपाली आम स्वदगर आ ताजा भेलाक कारणे उपभोक्ता के रोजाई में स्वदेशी आम के मांग बढ़ल अछि। भिनसर किनल गेल आम साँझ धरि में बिक्री भऽ चुकल ओ बतौलन। वृंदावनक उपभोक्ता रविन्द्र पटेल के अनुसार बाजार में हाल आम प्रति किलो 40 टका से लगकर 100 टका धरि बिक्री भऽ रहल बतौलन। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्यपूर्व युद्ध से संबंधित विषय में अमेरिका आ ईरान बीच नया चरण के वार्ता आई स्विट्जरलैंडक जनेवा में शुरू भेल अछि। वार्ता में सहभागी होबाक लेल ईरानी प्रतिनिधिमंडल शनि दिन राति जनेवा पहुँचल। एना अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेरी वांस सेहो वार्ताक लेल यूरोप प्रस्थान कयलनि अछि। एहि बीच ईरान लेबनान में इजरायली आक्रमण जारी रहल कहैत स्ट्रेट ऑफ हरमुज पुनः बंद करबाक घोषणा कयलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनने छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आज से चितवन के भरतपुर में हुआ शुरू। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा, सरकार नियम और कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी। राष्ट्रवाद पर किसी को संदेह न करने का किया आग्रह। और अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता आज स्विट्जरलैंड में शुरू होने की है तैयारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आज चितवन के भरतपुर में विशेष समारोह के बीच शुरू हुआ। पार्टी सभापति रवि लामिझा ने और वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने घंटी बजाकर महाधिवेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि रासोपा नेतृत्व वाली सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रुकेगी। उन्होंने वर्तमान कार्यकाल के भीतर सुकुम्बासी और सहकारी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के साथ सीमा विवाद पर हाल ही में दिए गए अपने बयान को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि कालापानी और लिपुलेख नेपाल के अभिन्न भूभाग हैं और इसके पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल के अभिलेखों की बात प्रमाण के संदर्भ में कही गई थी, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए नहीं। उन्होंने नागरिकों से अपनी राष्ट्रभक्ति पर संदेह न करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री शाह ने रासोपा को पूर्ण रूप से विकासवादी पार्टी बताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी सुशासन और विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएगी। भ्रष्टाचार नियंत्रण के विषय में उन्होंने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए रासोपा सभापति रवि लामिझाने ने देश के तीव्र विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहकार्य आवश्यक होने की बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत और दलगत वैमनस्य छोड़कर देश निर्माण में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ पूर्ण समझदारी और समन्वय कायम रहने का विश्वास भी जताया। महाधिवेशन में नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा कि नेपाली कांग्रेस रासोपा की दुश्मन नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों को आंतरिक विवाद, व्यक्तिवाद और नेतृत्व संघर्ष से बचने की सलाह देते हुए कहा कि जनमत प्राप्त करने के बाद भी दल इन्हीं कारणों से कमजोर होते हैं। थापा ने रासोपा के कार्यकर्ताओं से नेतृत्व का अंध समर्थन न करने और आवश्यक होने पर आलोचनात्मक चित बनाए रखने का आग्रह भी किया। महाधिवेशन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भी शुभकामना संदेश भेजे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम महाधिवेशन की निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक कर दी गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधियों की प्रारंभिक नामावली शनिवार रात ही प्रकाशित कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी के द्वारा के अनुसार आज रात 11 बजे प्रतिनिधियों की अंतिम नामावली प्रकाशित की जाएगी। कल सोमवार दोपहर 1 बजे से उम्मीदवारों के लिए नामांकन फॉर्म वितरण शुरू होगा, जबकि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची सोमवार शाम 6 बजे प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सोमवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक उम्मीदवारों के विरुद्ध दावा आपत्ति दर्ज करने का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम समय सीमा रात 9:15 तक तय की गई है, जबकि अंतिम उम्मीदवार सूची रात 11 बजे प्रकाशित होगी। आयोग के अनुसार आगामी आषाढ़ नवगते मंगलवार को सुबह 8:30 से दोपहर 3 बजे तक प्रथम चरण का मतदान होगा। इस दौरान एक सभापति और 99 केंद्रीय सदस्यों के चयन के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान संपन्न होने के लगभग 2 घंटे बाद मतगणना और परिणाम घोषणा की जाएगी, जिसके बाद आवश्यक होने पर दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। निर्वाचन आयोग ने सभापति पद के उम्मीदवार के लिए 51,000 रुपये शुल्क, एक प्रस्तावक और 51 समर्थकों की अनिवार्यता तय की है। इसी प्रकार पदाधिकारी पद के लिए 41,000 रुपये शुल्क, एक प्रस्तावक और 21 समर्थकों तथा केंद्रीय सदस्य पद के लिए 21,000 रुपये शुल्क, एक प्रस्तावक और 21 समर्थकों का समर्थन आवश्यक होगा। रासोपा के प्रथम महाधिवेशन में कुल 4,211 प्रतिनिधि सहभागी हैं। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग नारों के साथ आज नेपाल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। काठमांडू के दशरथ रंगशाला में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास और प्रवचन का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव सुमन राज अर्याल ने बताया कि सरकार विद्यालय स्तर से ही योग ध्यान और आरोग्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पोखरा महानगर पालिका ने पृथ्वी चौक स्थित प्रस्तावित बस पार्क के क्षेत्र में बने बास्तोला कॉम्प्लेक्स के 320 से अधिक शटर और अन्य संरचनाएं हटाई हैं। महानगर पालिका के अनुसार ये कार्रवाई आपसी सहमति के आधार पर की गई। महानगर प्रमुख धनराज आचार्य ने बताया कि व्यवसायियों के साथ लगातार संवाद के बाद संरचनाएं खाली कराई गई। वहीं सुखमवासी बस्ती के 572 परिवारों में से अब तक 337 परिवारों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम ने वैदेशिक रोजगार के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, ब्रिटेन, यूएई और अजरबैजान भेजने का झांसा देकर विभिन्न व्यक्तियों से बड़ी रकम वसूल की थी। रकम लेने के बाद संपर्क विहीन होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल भेज दिया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंच गए हैं। इसके अलावा मध्यस्थ देश पाकिस्तान और कतर के नेता भी स्विट्जरलैंड में हैं। ये बात स्विट्जरलैंड के पर्यटक स्थल बर्गेनस्टॉक में होनी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में बड़े चेहरे के रूप में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हैं। उनके अलावा अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल में संसद के स्पीकर बगर गलिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची शामिल हैं। ये नेता इससे पहले भी इस्लामाबाद में हुई बातचीत में अपने देश की अगुवाई कर चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज सुबह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। बीबीसी के मुताबिक ईरानी वार्ता दल के प्रमुख मोहम्मद बगर गालिबाफ ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और ईरानी विदेश मंत्री ने स्विस विदेश मंत्री के साथ बैठक की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि इस वार्ता में ईरान, अमेरिका, कतर और पाकिस्तान यानी चारों देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अल जजीरा के एक कैमरामैन और कम से कम एक बच्चा शामिल है। ये जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों और बचाव कर्मियों ने दी है। अल जजीरा ने कहा कि वो अपने संवाददाता अहमद विशाह की हत्या के जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करता है। अहमद विशाह शनिवार को मध्य गजा के एक घर पर हुए हमले में मारे गए। अल जजीरा ने यह भी कहा कि अहमद विशाह की मौत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है और यह पत्रकारों को निशाना बनाने और सच की आवाज को दबाने की लगातार जारी एक व्यवस्थित नीति को दर्शाता है। वहीं इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने आरोप लगाते हुए अहमद विशाह को हमास की सैन्य शाखा से जुड़ा आतंकी बताया और कहा कि वो स्नाइपर ऑपरेटिव के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि इसराइली सेना ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया। गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच लागू हुए युद्ध विराम के बाद से इसराइली सेना की कार्रवाई में 1,007 लोगों की मौत हो चुकी है। गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को

0: प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा, सरकार नियम और कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी। राष्ट्रवाद पर किसी को संदेह न करने का किया आग्रह। और अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता आज स्विट्जरलैंड में शुरू होने की ही तैयारी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: फोर्जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
2: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
3: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको सञ्चार।

बानी जी ने कोछो रिसाए जगर ने तिम्रो बानी जी ने कोछो रिसाए जगर ने भित्र भित्र माया गर